0: लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: In Dubai
3: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, four pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
6: Feel the fun. Play Ojo.
5: 18 plus, gamble aware.
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: क्लासिक नगमे आप

0: में।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
1: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
1: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
1: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
1: In Dubai.
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears. Give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: Backed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
9: Never leave. Aapke apne Leica Gold par.

0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
2: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही,

0: लाइका गोल्ड अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर, कथना कथिना आवे तोट, कथ कथ कथ

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुदभावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोल लख होवै लख होवै लखवीस लख।

जोर ना जुगती छुटे संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए।

0: Roger.
1: I've been asked by Shredded Wheat to read out their ingredients list. Drum roll. Whole grain wheat. No, that's it. A single ingredient, high fibre cereal. Shredded Wheat. It simply does it. I'm telling you, that's it. Applies to Shredded Wheat Bite Size and Big Biscuit only.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
5: Goodbye.
4: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Chawal ho best. Sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
9: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
10: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
11: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
13: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
14: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स
13: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
15: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
16: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है
17: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में
16: सच
17: बिल्कुल देश का असली स्वाद लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह
18: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 Cranbrook Road, Gans Hill, Ilford, IG2-6HA. Call kare 07555-506-015. Bikaner Wala, Taste of India, now in Ilford.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Deep Raja, making you feel good every weekend breakfast.

0: ब्रेकफास्ट विद डीप राजा।
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208 922 3444 24 hour line।

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशनवाइड.
1: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy three nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another three nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 at all protected.
2: Dad!
3: What's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: मोस्ट मॉर्गेज ब्रोकर्स चार्ज यू अ फी, बट वी डोंट चार्ज यू अ पेनी एंड वी स्टिल पुट कैश बैक इन योर पॉकेट.
7: हियर्स हाउ इट वर्क्स. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
0: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest Ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
9: गारंटेड.
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
9: फोन 02085748410.
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
2: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
1: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
2: Friends, family ya special night out. इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
0: एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग ऑफ टाइमलेस गजल्स. द प्रिंस ऑफ गजल, द यंगेस्ट गजल मेस्ट्रो रंजीत रजवाड़ा.
3: नजर से नजर.
0: परफॉर्मिंग लाइव इन लंदन ऑन थर्सडे 30th ऑफ जुलाई एट हैरो आर्ट सेंटर. बुक योर टिकट्स नाउ एट harroarts.com. लाइक अवर रेडियो नेटवर्क लिसनर्स कैन एंजॉय 10% off using the promo code Laika Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
5: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time, legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410. दैट्स 8574-8410.
5: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.

0: Fisher Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sierra South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Fisher Rice, come down and taste the difference.
1: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
2: Shaam chalne lage.
1: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Tickets starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
3: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
4: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीज एंड सीज अप्लाई.
6: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
7: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आप पवित्र यात्रा पर.
6: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
7: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
6: दर्शन पण अने यूरोप पण.
7: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
6: कॉल 02089002323. द स्टार टूर्स,
7: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
8: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
10: मुझे कुछ कहना है,
11: मुझे भी कुछ कहना है,
10: मुझे कुछ कहना है,
11: मुझे

0: जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ?

0: Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: गुड मॉर्निंग, आइए बात करते हैं आज के मौसम की। और आज एक बार फिर से मौसम में हमें ढेर सारी सनशाइन देखने को मिलने वाली है। लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री तक रहेगा। मैनचेस्टर में आज हल्की बारिश होने की संभावना है, टेम्परेचर 20 डिग्री तक जाएगा। और मिडलैंड्स में 21 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा आज का टेम्परेचर।
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Ritu Sharma.
1: Yes, good morning. Namaskar, swagatam. Aap sun rahe hain aapka man pasand radio, Laika Radio Network, jahan par Ritu Sharma एक बार फिर से हाजिर है आपका साथ देने के लिए आपसे लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक, और आपको सुनवाने के लिए एक नहीं दो नहीं ढेर सारे क्लासिक्स।
3: Laika
0: Gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: Travel Hub.
4: At all protected.
0: Laika. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Laika Gold, Greater London.

0: क्या खूबसूरत गाना है रफ़ी साहब की आवाज़ में, और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये गाना तो एक अवार्ड विनिंग सॉन्ग है, और इस गाने के लिए रफ़ी साहब को अवार्ड क्यों नहीं मिला। लेकिन उसे उन्हें लोगों का प्यार जो मिलाना वही अवार्ड है। इतना खूबसूरत गाना है कि इस गाने को जब भी मैं सुनती हूँ इसमें बस डूब ही जाती हूँ, और मेरी उम्मीद है कि आप सबका भी हाल शायद ऐसा ही होगा। उम्मीद फिल्म से था ये गाना, जिसमें जॉय मुखर्जी और नंदा ने काम किया था, और उससे पहले आपने बप्पी दा का म्यूजिक सुना किशोर दा की आवाज़ में, नमक हलाल फिल्म का गाना। दो गीतों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, वीकेंड की शुरुआत हो गई है, सैटरडे की शुरुआत हो गई है। 10:14 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं हूं ऋतु शर्मा। सभी सुनने वालों को जो जहां कहीं भी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है आप सब चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं और जीवन का भरपूर मजा ले रहे हैं। और आज ये मौसम वैसे इतना बुरा नहीं है जितना आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इस हफ्ते गर्मी ज्यादा बढ़ सकती है। एनीवेज, बढ़ेगी तो क्या करें, कुछ चीज़ें हैं जो भगवान ने अपने हाथों में रखी हैं, और अच्छी ही बात है कि उनके हाथ में, क्योंकि अगर ये चीज़ें भी इंसान के हाथों में आ जाती तो न जाने क्या होता। एनीवेज, हम बढ़ते हैं आगे, और आपको बता दूं कि 1 बजे तक ऋतु शर्मा आपके साथ ही रहेगी, और हमेशा की तरह आपको एक से बढ़कर एक गाने सुनाने की कोशिश करती रहेगी। थैंक यू सो मच, आपके ढेरों मैसेजेस मिले और जो बता रहे हैं कि आप मेरे साथ हैं, तो बस ये साथ चलता रहेगा 1 बजे तक।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 128.3 भारतीय रुपए, और याद रखिए कि ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको कराना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.

0: Natto food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: Dad!
3: What's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: 1996 की मूवी पापा कहते हैं से था ये गाना, राजेश रोशन का म्यूजिक, और इस फिल्म में काम किया था जुगल हंसराज और साथ में थी इनके मयूरी कांगो। जुगल हंसराज जिन्हें आपने मासूम फिल्म में भी देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जो इतनी खूबसूरत एक्टिंग करता है कि अक्सर ही उसे याद करके उस फिल्म को देखकर आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमाल की फिल्म थी। और आपको बता दें कि आज वही छोटा सा बच्चा जुगल हंसराज जिनका नाम है 53 इयर्स का हो गया है। Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आज जुगल हंसराज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने पापा कहते हैं फिल्म में तो काम किया ही था, लेकिन इसके अलावा कुछ और फिल्में उनकी आई हैं जो उनके करियर की यादगार फिल्में हैं। लेकिन अगर उनके साथ साथ आज आपका भी जन्मदिन है तो हमारी ओर से आपको भी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और आपके ढेरों मैसेजेस भी मिले हैं तो समय आ गया है कि उन पर एक नज़र डाल ली जाए।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: तो भाई राजीव पटेल जी का कहना है कि क्या बात है, इतने अच्छे गाने सुना रही हो, क्या रसमलाई खा के आई हो या फिर आलू के पराठे? अरे सुबह सुबह ना तो कोई रसमलाई खाता है ना आलू के पराठे, बट मेरी विश है कि शाम को शायद मुझे मिल जाए, आपने याद दिलाए हैं तो। लेकिन थैंक यू, आपको गीत पसंद आ रहे हैं तो बस इससे खुशी की बात क्या है। थैंक यू साथ देने के लिए विनोद जी, बहुत धन्यवाद। हमारे संतोष जी, अर्जुन जी, गीता जी, जैस्मीन और सुरजीत जी कहते हैं कि मैं तो गार्डन में बैठ के आपके शो का मजा ले रहा हूँ। तो समर का यही मजा है कि गार्डन में बैठो, समय बिताओ और बड़ा अच्छा लगता है, रंग बिरंगे पक्षी दिखते हैं और हमारे गार्डन में तो बहुत सारे तोते भी आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। तो मज़े के साथ अपना दिन की शुरुआत कर रहे हैं आप, जानकर अच्छा लगा सुरजीत जी। थैंक यू राजेश जी, साथ देने के लिए धन्यवाद। और कहते हैं कि अक्सर ही ऐसे गाने सुनने की ख्वाहिश रहती है जो अक्सर नहीं बजाए जाते हैं, तो देखते हैं आज इस शो में आपको कौन से नए गाने सुनने को मिलते हैं। आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत खुशी है जानकर। हरीश कत्री जी, किरण जी, मृदु जी एंड नरेंद्र बागिया जी, आपने लिखा है कि अर्ज किया है, क्या अर्ज किया है आपने, कि गमों की धूप में कभी जाना ना पड़े, इन हंसी पलकों को कभी भिगोना ना पड़े, बिन मांगे ही मिल जाए खुशियाँ आपको इतनी कि फिर किसी दुआ के लिए सर झुकाना ना पड़े। कितनी अच्छी दुआ है और ये दुआ मैं आप सबके लिए मांगती हूँ, ये मेरी ओर से आप सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू गिरीश जी, आप भारत में हमारे साथ जुड़े हैं। कहते हैं मैंने भोजन कर लिया है, अब आपके साथ जुड़ गया हूँ। हाँ वहाँ तो लंच टाइम हो गया होगा, तो बस मज़े के साथ रिलैक्स कीजिए और यहाँ से बजने वाले गीतों को एंजॉय कीजिए। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू गिरीश जी। अरुणा जी, मालती जी, महेंद्र बाजारिया जी, और इसके अलावा मैसेजेस की लिस्ट बहुत लंबी है जिन्हें मैं जरूर पढ़ूंगी, लेकिन फिलहाल ये गाना आप सबके लिए।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: देखिए ये गाना आज तो मैंने आपको सुनवाया है, लेकिन मुझे पता है 2-3 दिनों बाद आप ये गाना खुद गाएंगे कि नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता गार्डन हमारा या घर हमारा, थोड़ी सी छाया बरसा। मौसम गर्म होने वाला है, लेकिन ये गाना बहुत ही खूबसूरत है और इस गाने को डेडिकेट करती हूँ उन सभी के नाम पर जो रफ़ी साहब के फैंस हैं, खासतौर पर हमारे विजय गुडूरी जी जो मॉरिशस से लौट कर आए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। तो एक बार फिर से लंदन में आपका स्वागत है और आज आपने भी हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार हमारे साथ शेयर किया है और उसमें लिखा है कि किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। बिल्कुल 100% सच बात आपने हमारे साथ शेयर की है और ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं। और आपके साथ साथ हमारी मालती जी प्रोग्राम सुन रही हैं, सलमा जी कैंट में है, वियाना में अनिल सोनी जी हैं, शेखर आनंद जी हैं, उल्लास टोरंटो में है, हंसा वोरा जी, मिसे शेख, भरत गंगाराम जी थैंक यू कहते हैं, नमस्कार जादू भरी आवाज़ क्या बात है, ये लाइन सुनकर तो मेरा दिल खुश हो जाता है, थैंक यू भरत जी, सहर जी, दिनेश पोपट जी, हमारी प्यारी जासू जी एंड जितने भी साथी प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। और अगला गाना चलिए आप सबके लिए
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. Ye hai Laika Gold. Laika Gold. Ritu Sharma live on Laika Gold, Greater London.

0: लता जी और शब्बीर कुमार की आवाजों में फिल्म वो सा दिन से लिया था ये गाना, और ये गाना मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है। गिरीश जी मुझसे पूछ रहे हैं कि ये फिल्म आपने देखी है। जी हाँ, बिल्कुल देखी है, एक नहीं दो बार नहीं कईयों बार देखी है, और जब भी टीवी पर मुझे ये फिल्म मिल जाती है मैं देखने बैठ जाती हूँ, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप कहीं से भी देख लीजिए, पहले देखी होती है तो पता चल जाता है तो मज़ा आता है। इट वॉज़ ए लवली मूवी, मैंने बहुत इंजॉय की थी और आज भी करती हूँ। और इसके अलावा रक्षा जी किमी पटेल हमारे साथ है, थैंक यू हिमांशु पटेल जी कहते हैं शो में मज़ा आ रहा है, क्या बात है, थैंक यू तोजी जी, जैस्मीन जी, रानी जी, महेंद्र बाजारिया जी, दिव्या जी, ज्योति जी एंड ऑफकोर्स हमारी प्रज्ञा जी, सभी का स्वागत है शो में। और आपको बता दूँ कि प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में एक कंपटीशन भी है। जी हाँ, कंपटीशन भी है, और जिसमें मैं आपको दो टिकट्स देने वाली हूँ, और दो टिकट्स किसके मिलने वाले हैं ये मैं बताऊंगी आपको अभी नहीं, नेक्स्ट वाले आवर में। तो हमारा साथ देते रहिए और ध्यान से प्रोग्राम को सुनते रहिए।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और कहीं हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो बस साउथॉल ट्रैवल को फ़ोन मिलाइए, उनके पास दुबई जाने के लिए बहुत बढ़िया डील्स चल रही हैं। उन्हें फ़ोन कीजिए 02085748410 पर, और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Ever get giddy renewing your car insurance? Fantasize about finance offers or paying your service bill? Probably not. After all, the best bit about driving a BMW is driving it. So leave the admin and skip to the best bit. Choose a new BMW 1 Series or 2 Series Grand Coupe by the 30th of September to enjoy a year's insurance, 3 years servicing, plus 2.9% APR representative. Search BMW, skip to the best bit. BMW UK Limited is a credit broker, not a lender. BMW Finance, T's and C's apply. Insurance age restrictions and exclusions apply. Whew, that's the admin over with.
3: Riti Sharma on Like a Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: Mamster નું પાણી પૂરી અને પાણી પૂરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food branches.
2: Okay, Laura, from the top.
3: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier. With personalized financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner. Ragazan.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
7: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: लीजिए, लता जी और मुकेश जी की आवाज में ये गाना आप सबने पसंद किया है और हमारे महेंद्र जी का कहना है कि मुकेश जी की आवाज सुनकर दिल खुश हो गया। तो चलिए, ये गाना हमने आप ही को डेडिकेट किया। संध्या भावसर हमारे साथ जुड़ी हैं और एक कंप्लेन आई है दीपक जी ने हेचेंड से की है और आपने लिखा है कि ऋतु, आई हैव ए कंप्लेन टू मेक। माय प्रॉब्लम इज दैट जब मैं आपकी आवाज सुनता हूँ तो मैं कुछ भी काम और नहीं कर पाता हूँ और जब तक मैं आपके शो से जुड़ा रहता हूँ मैं कहीं और भी नहीं जा पाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? तो मैं यही कहूँगी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जब तक ये शो चल रहा है आप कहीं जाने की सोचिए भी मत, उसके बाद पूरा दिन पड़ा है, जहाँ मर्जी जाइए। और आई लव योर मैसेज, थैंक यू। इस तरह की कंप्लेंट्स तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आती ही रहे। ये सब आपका प्यार है कि आप इतनी प्यारी बातें और इतने प्यार से मेरा शो सुनते हैं, मैं क्या कहूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आपको बता दूँ कि जो गाने मैं बजा रही हूँ इसी तरह की और भी गाने आपको सुनवाने वाली हूँ प्रोग्राम के अगले हिस्से में, क्योंकि अगले हिस्से में जानते हैं हम आज की यादें में किसे याद करने वाले हैं। जिसे याद करने वाले हैं ना, मैं जानती हूँ आप सबकी फेवरेट एक्ट्रेस है और उनका नाम है नंदा। यस, बहुत खूबसूरत गाने नंदा जी पर पिक्चराइज है। तो आज की यादें में हम उनके बारे में कुछ बातें करेंगे और सुनेंगे उन पर पिक्चराइज ढेर सारे गाने।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £97.95 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
4: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
4: high appreciation
3: in Dubai.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life. Start.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, auto protected.
3: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
4: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421497541. Radio Partners, like a radio network.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
6: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99. Exclusively at quality food stores.
7: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
8: बीकानेर वाला परंपरा भी।
9: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
10: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.

0: 4-8-4-1-0.
1: ये है लाइका गोल्ड ऋतु
2: शर्मा। सही सुना आपने, मैं हूँ ऋतु शर्मा और ये है लाइका रेडियो नेटवर्क। प्रोग्राम के सेकंड आवर में होती हैं यादें और आज की यादें में हम अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है नंदा कर्नाटकी। पहले उन पर दो गाने पिक्चराइज बैक टू बैक।
1: लाइका गोल्ड, Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
1: Leica. Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Leica Gold.

0: तीन देवियां फिल्म से था ये गाना किशोर दा और लता जी की आवाजों में, और उससे पहले रफी साहब की आवाज में आपने गीत सुना। और ये दोनों ही गाने नंदा जी की दो सुपरहिट फिल्मों से लिए थे। और आज की यादें में हम नंदा, जिनका नाम है नंदा कर्नाटकी, उन्हीं को याद करने वाले हैं। नंदा जी हम सब जानते हैं बॉलीवुड के गोल्डन एरा यानी कि स्वर्णिम युग जिसे कहा जाता है, उस जमाने की एक बहुत ही खूबसूरत, सादगी भरी और एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। 1950 से 1960s तक के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा पर राज किया। कहने वाले कहते हैं कि पर्दे पर उनकी मासूमियत, उनकी गंभीर एक्टिंग और घर परिवार जैसी लड़की की जो छवि थी ना, उसने उस जमाने में लोगों का दिल जीत लिया था। नंदा जी वैसे तो जनवरी में बॉर्न है, जनवरी में बड़े टैलेंटेड लोगों का जन्म हुआ है। और नंदा जी भी जनवरी में ही बॉर्न हुई थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के एक फिल्मी परिवार में। और इनके पिता जो थे वो मास्टर विनायक, एक मराठी सिनेमा के जाने माने एक्टर और प्रोड्यूसर थे। इसलिए फिल्मों में आने में नंदा जी को ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब मास्टर विनायक छोटी सी उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए तो नंदा जी केवल 8 साल की थी। और परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए नंदा जी को बचपन में ही एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना पड़ा, जिससे जो पैसे मिलते थे परिवार का, घर परिवार का खर्चा चलता था। और जब छोटी सी नंदा फिल्मों में आई तो लोग उन्हें बेबी नंदा के नाम से जानते थे। और उस जमाने में उन्होंने कुछ मराठी नाटक, कुछ मराठी और कुछ हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया था। लेकिन आपको याद होगा एक फिल्म आई थी तूफान और दिया, इसे मैंने देखा है, मुझे दिखाई गई थी ये फिल्म। अच्छी फिल्म थी, उसमें बहुत अच्छा मैसेज था। वी शांताराम की फिल्म थी जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। और इसमें नंदा आई थी काम करके और इसमें उन्हें इतना पसंद किया गया कि कहने वाले कहते हैं कि इस फिल्म के बाद उनके करियर को एक नई दिशा मिली। और उसके बाद तो उन्होंने और भी फिल्में की। आपको पता होगा उनकी एक छोटी बहन फिल्म आई थी जिसका गाना आज भी जब रक्षाबंधन आता है तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ये गाना बिना बजे त्योहार पूरा ही नहीं होता। ऐसी ही कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। बल्कि जब ये फिल्म आई थी ना छोटी बहन, उसके बाद तो वो एक छोटी आदर्श बहन के रूप में मजबूर हो गई थी। लेकिन बहन से हीरोइन तक का सफर कैसे तय किया नंदा जी ने, बताऊंगी आपको। लेकिन सबसे पहले ये बताऊं,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 128.3 भारतीय रुपए। और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI branch online और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.

0: लता जी की आवाज में ब्यूटीफुल सा रोमांटिक सा गाना जो नंदा जी पर पिक्चराइज किया गया था.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और जानते हैं जब ये फिल्म आई थी उस समय नंदा टॉप की एक्ट्रेस थी और शशि कपूर की शुरुआत की एक के बाद एक सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी. कोई भी बड़ी एक्ट्रेस उस ज़माने में उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी. उन्हें लगता था कि अगर हमने इनके साथ फिल्म की तो हमारी भी कहीं ऐसा ना हो फ्लॉप फिल्मों का दौर शुरू हो जाए. लेकिन नंदा जी ने बिना किसी झिझक के शशि कपूर के साथ दो फिल्में साइन की. चार दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथों में जैसी फिल्में साइन की और इसके बाद जब जब फूल खिले जो उस जमाने की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी. और शशि कपूर ने हमेशा नंदा जी को अपनी फेवरेट हीरोइन बताया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नंदा नहीं होती, मेरे साथ फिल्म काम करने को तैयार नहीं होती तो शायद मेरा करियर ही नहीं बनता और मैं भी कहीं गुमनामी के अंधेरों में खो चुका होता. आज हम नंदा जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनका एक और बहुत ही सुंदर सा गीत सुनवाने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले आपको बता दें कंपटीशन के बारे में जो होगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में. लाइका रेडियो नेटवर्क, सिफत इवेंट्स और सोल जैम लंदन के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं ए नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा. ये होने जा रहा है एट हैरो आर्ट सेंटर ऑन थर्सडे 30th जुलाई एट 7 PM. और आपको क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले आवर में बताऊंगी. लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि अगर आप आज का कंपटीशन नहीं जीतते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है. आप टिकट्स बुक करा सकते हैं herroarts.com पर जाकर. टिकट प्राइस £25 है और जब आप लाइका रेडियो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑनलाइन टिकट्स बुक करने पर. तो बस सारी डिटेल मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और प्रोग्राम का अगला हिस्सा भी ध्यान से सुनते रहिए क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है आप बन जाएं हमारे आज के कंपटीशन के विनर और आपको मिल जाए दो टिकट्स वो भी बिल्कुल मुफ्त में.

0: देखिए शशि कपूर कितने सारे लोगों के हमारे लिसनर्स के फेवरेट एक्टर रहे हैं, और अगर नंदा जी उनके साथ फिल्म काम करने को तैयार नहीं होती तो शशि कपूर कैसे फिल्मों में आते और हमारे फेवरेट एक्टर कैसे बन पाते। नंदा जी इतनी बड़ी स्टार थी जब उन्होंने शशि कपूर के साथ काम किया, राजेश खन्ना के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी हिट फिल्में दी हैं जिसका कि गीत मैं आपको ऑलरेडी सुनवा चुकी हूँ। इनफैक्ट उस ज़माने के जितने भी बड़े हीरो थे सबकी हीरोइन बनकर आई हैं नंदा जी। ऐसा ही एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाने वाली हूँ आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
2: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना जो सुनील दत्त और नंदा जी पर पिक्चराइज किया गया था। इन्होंने एक और फिल्म में काम किया था राजेश खन्ना के साथ जिसका नाम था इत्तफाक, और उसमें उनका ग्रे शेड वाला कैरेक्टर था। और जानते हैं इस फिल्म में कोई गाना ही नहीं था, लेकिन इस फिल्म में नंदा जी की एक्टिंग को बहुत सराहा गया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जब नंदा जी को लगा कि उन्हें मेन लीड रोल नहीं मिल रहे हैं, उन्हें ऐसी भूमिकाएं नहीं मिल रही हैं जो वो डिज़र्व करती हैं या जो वो करना चाहती हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे अभिनय से, फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और शांत जीवन जीना पसंद किया। जो उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि नंदा जी का जो निजी जीवन था, जो पर्सनल लाइफ थी, हमेशा बहुत शांत और विवादों से दूर रही। उन्होंने कभी शादी भी नहीं की, लेकिन 1992 में जब वो 50 की उम्र पार कर चुकी थी, उन्होंने मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई से एंगेजमेंट की थी। लेकिन दुर्भाग्य से सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, और उसके बाद नंदा जी ने कभी किसी से शादी करने की या घर बसाने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि इस एक्सीडेंट ने उन्हें बहुत ही गहरा सदमा पहुंचाया। और उसके बाद वो बिल्कुल, कहते हैं, आइसोलेशन में चली गई, ना किसी से मिलना, ना किसी से बातें करना। एक और उनका बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है, और पॉडकास्ट का जो नया टॉपिक है उसका नाम है रिइन्वेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजन, एप्पल एंड जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ जाकर।
1: This is Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 0192322727274। बुक योर टेबल टुडे।
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Chawal ho best. Sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
8: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
9: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
9: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
9: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
9: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
11: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
11: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
13: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: SonarTours.co.uk, 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get £600 off. Call SonarTours on 0208 951 0111.
15: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
16: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday, the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners, Leica Radio Network.
17: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast, be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. It's summer on the Leica Radio Network.

0: से बढ़कर एक खूबसूरत गाने पिक्चराइज किए गए हैं नंदा जी पर, और गिरीश जी कहते हैं कि गाना मेरे नाम कीजिए, तो मैं सारे के सारे गाने आप सभी के नाम पर करती हूँ जिन्होंने मुझे ढेरों मैसेजेस भेजे हैं और बताया है कि आपको आज की यादें और गीत पसंद आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि आज हम नंदा जी को याद कर रहे हैं और 25 मार्च 2014 में जब उनकी एज 75 ईयर्स की थी तब हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई। लेकिन नंदा जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी सादगी, उनकी बेहतरीन अदाकारी, उनकी यादगार फिल्में हमेशा जो भी फिल्म प्रेमी है उनके दिलों में रहेगी। और भी दो खूबसूरत गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, आप हमारा साथ देते ही रहिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज ये 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए and 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So, Gold Rate is 97.9 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
4: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
3: in Dubai.
5: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Power line.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
9: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday 30th of July at Harrow Arts Center. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: London, are you ready? Raghav End presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Chai break ho ya busy work day,
4: सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ ये गाना है जिसने बहुत सारे साथियों का मन भारी कर दिया है, लेकिन ये गाना बहुत ही खूबसूरत है और आज नंदा जी की यादें हो ये गाना ऋतु कैसे ना बजाए। ये गाना मैंने ज़रूर सुनवाना था, लेकिन जाते जाते आपका मूड हल्का करूंगी, एक और मस्ती भरा रोमांटिक गाना सुनवाऊंगी जो होगा आज की यादें का आखिरी गाना, जिसमें एक बार फिर से मुकेश जी की आवाज़ है और साथ दे रही हैं लता जी। लेकिन उससे पहले आप सभी को थैंक यू कहूंगी जिन्होंने ढेर सारे मैसेजेस भिजवाए हैं और आप सबका ये कहना है कि हमें आज के गाने, आज की यादें बहुत पसंद आई। सो थैंक यू साथ देने के लिए। और याद रखिए, प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक कॉम्पिटिशन भी है, इसलिए आज हम अपना थ्री वर्स गेम नहीं खेल पाएंगे, लेकिन ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स जरूर सुनवाऊंगी। तो कंपटीशन के लिए तैयार रहिए, उसमें आपको क्या करना है और आप क्या जीतेंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से बताऊंगी। तो साथ देते रहिए, ये गाना होगा आज की यादें का आखिरी गाना। मिलते हैं आपसे न्यूज के उस पार। This is Leica.

0: यस, बैक टू बैक दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है और इस आवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। आपको बताती चलूं, मैं हूं रितु शर्मा और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और नॉर्मली इस आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी सुनते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन आज हम थ्री वर्ड्स गेम नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इस आवर में होने वाला है एक कंपटीशन। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं बताती हूँ कि कंपटीशन क्या है क्योंकि अब हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। लाइक अ रेडियो नेटवर्क, सिफत इवेंट्स और सोल जैम लंदन के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं अ नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा। और ये होने जा रहा है एट हैरो आर्ट सेंटर ऑन थर्सडे 30th July एट 7 PM। आपको क्या करना है, आपको लिख कर भेजना है वर्ड गजल, उसके साथ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस सही वाला, क्योंकि अगर आप आज विनर बनते हैं तो ईमेल के थ्रू ही आपको टिकट्स भेजे जाएंगे। तो ये सब कुछ आप फटाफट कर दीजिए, मैं नंबर आपको अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूर याद दिलाऊंगी कि अगर आज आप कंपटीशन जीतते नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप टिकट्स बुक कर सकते हैं herroarts.com पर जाकर। टिकट्स की प्राइस है £25 और जब आप लाइका रेडियो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑनलाइन जब आप टिकट बुक कराते हैं। तो बस फटाफट भेज दीजिए जो जो मैंने आपसे मांगा है, लिखिए गजल, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, इस नंबर पर भिजवाइए अपना मैसेज। इस आवर के एंड में बताऊंगी कि कौन बने हैं लकी विनर, जिन्हें मिलेंगे 2 टिकट्स रंजीत रजवाड़ा को सुनने जाने के लिए।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 128.3 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit travelhubworld.com.
4: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
5: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
4: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
6: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.

0: लीजिए लता जी के आवाज में रजिया सुल्तान फिल्म से लिया था ये गाना जो हेमा मालिनी की फिल्म है। और आप जानते हैं कि हेमा मालिनी इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है। और मनीषा शाह का कहना है कि कुकिंग करते करते इस गाने को मैं फुल वॉल्यूम पर सुन रही हूँ। क्या बात है, ये गाना है ही ऐसा, मुझे भी बड़ा पसंद है, इसीलिए आज प्रोग्राम में इसे शामिल किया और आप सबने पसंद किया। सो थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क,
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: जी हाँ, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी। और आप सब सुनी रहे हैं कि दिवाली स्टोरी जो है एक म्यूजिकल है जो रॉयल एल्बर्ट हॉल में सोल्ड आउट इवेंट होने के बाद अब फिर से होने जा रहा है। और अब की बार ये हो रहा है ओवो अरीना वेम्बली में ऑन 27 सितंबर। स्टूडेंट्स के लिए प्री शो होगा शाम को 5 बजे से 5:45 तक, और मेन शो होगा शाम को 6:15 से 9:30 PM तक। सनातन इवेंट्स के फाउंडर नितिन पालन MBE द्वारा निर्मित और बॉलीवुड डांस स्कूल टीम की कोरियोग्राफी से सजे इस इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाले दिवाली स्टोरी को 7 स्पेशल गानों के साउंड ट्रैक और एक पूरी इंटरनेशनल आर्टिस्ट की टीम के साथ स्टेज पर जीवंत किया जाएगा। आप इसके टिकट्स बुक करा सकते हैं, और टिकट्स बुक कराने के लिए आपको विजिट करना है www.diwalistory.com पर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तो गीता जी कह रही है कि ऋतु मैंने 3 वर्ड्स मिस कर दिए। तो गीता जी आप पकड़ी गई कि आपने शुरू से नहीं सुना है, क्योंकि आज हम 3 वर्ड्स गेम नहीं खेल रहे हैं आज, क्योंकि इस वाले आवर में एक कंपटीशन चल रहा है। बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, इस वाले आवर के एंड में बताऊंगी कि इस कंपटीशन के विनर कौन बने हैं। लेकिन फिलहाल शुरू करने जा रही हूँ आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाती हूँ पहला गाना लता जी की आवाज़ में आप सबकी फेवरेट फिल्म से।

0: लता जी के आवाज में अनाड़ी फिल्म से था ये गाना जिसे आपने अभी सुना आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन से। Feel good track.
1: Brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: शंकर जयकिशन का म्यूजिक था इस गाने में और अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना।
2: This is Ritu Sharma.
0: तो आपको बता दें कि माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपने बच्चों को जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत देने के लिए ये सुनिश्चित करें कि उसके सभी बचपन के टीके यानी कि वैक्सीनेशन समय पर लग चुके हैं। टीके आपके बच्चे को खसरा और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं जो हमारी कम्युनिटीज़ में आसानी से फैल सकती हैं। यदि आपके बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो इन बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड में बचपन के टीके हर वर्ष 5,000 से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। ये जानकर आपको भरोसा होगा कि NHS द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी बचपन के टीके दुनिया भर की लाखों बच्चों को सुरक्षित रूप से लगाए जा चुके हैं। समय पर टीके लगवाना सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यदि आपके बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो भी आप अपने GP से संपर्क कर सकते हैं, उसका वो छूटा हुआ टीकाकरण पूरा करवा सकते हैं। क्या आपके बच्चे के सभी टीके समय पर लग चुके हैं? अपने बच्चों की रेड बुक में देखिए या फिर अपने GP प्रैक्टिस से बात कीजिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए nhs.uk/childhoodvaccinations पर।
2: रिची शर्मा ऑन लाइक अ गोल्ड।
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: लीजिए, ओपी नैयर के म्यूजिक पर था ये गाना नया दौर फिल्म से, और आप सबको ये गाना पसंद आया है तो चलिए थैंक यू साथ देने के लिए। और अब एक गाना और बजाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि आज के कंपटीशन को किसने जीता है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हॉलीडे पर जाने की सोच रहे हैं तो दुबई चले जाइए, साउथ होल ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि दुबई के लिए बहुत बढ़िया डील्स चल रही हैं। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड है सब कुछ।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Leica Go TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com।
4: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
5: Goodbye.
4: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
6: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
7: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
6: So where do we find something like that now?
7: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
8: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
9: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
10: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
14: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
5: परंपरा भी।
14: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इलफोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
15: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
16: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: जी, पर हमें तो अब जुदा होना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का एंड समय पास आ रहा है। और जाने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आज के हमारे इस कॉम्पिटिशन को किन्होंने जीता है, लेकिन जो नहीं जीत पाए हैं उनको फिर से याद दिला दूं कि डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ से और शोज में कॉम्पिटिशन चालू है, कंटिन्यू है, आप हमारा साथ देते रहिए, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ना किसी शो में कंपटीशन जीतने का मौका मिल जाए। और आप टिकट्स बुक करा सकते हैं hairoarts.com जाकर। टिकट्स प्राइस £25 है, लेकिन जब आप लाइका रेडियो कोड यूज़ करते हैं तो आपको ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आज जिन्होंने इस कॉम्पिटिशन को जीता है उनका नाम है हिमांशु पटेल। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आप बने हैं हमारे आज के इस कॉम्पिटिशन के विनर। आप जा रहे हैं किसी एक के साथ रंजीत रजवाड़ा को सुनने के लिए और आपको टिकट्स ईमेल के थ्रू सेंड किए जाएंगे। तो कांग्रेचुलेशंस, शो देख कर आइए और फिर हमें बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज जो 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टका।
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 97.9 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Like a gold. Like a gold.
5: Like a gold.
0: तो बस अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगला गाना लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पार आज आपका साथ देंगी लाइका गोल्ड पर 1 से 4 शाइनी शीना। 1 से 4 आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनवाएंगी और लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आज आपके साथ होंगी फजीला, 1 से 4 आपके साथ रहेंगी, और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगी आनंदी आपके साथ। तो जो करना है करते रहिए, मजे के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, गीतों को एंजॉय करते रहिए। कल आपसे मैं फिर से मिलूंगी आज के शो में। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर इस शो को आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लिसन बैक पर जाकर अपने कन्वीनियंट टाइम पर कभी भी इस शो को दोबारा सुन सकते हैं। कल तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।
5: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
3: This is Leica Gold.
6: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
7: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।

0: हाँ जी नवा लखा मंगा दूंगा. सो दिस इज शीना. वाह वाह, मैं ना एक तरफ से तो जो हमने यू नो बैक टू बैक प्ले किया, पहला गाना था ये दिल दीवाना, और राइट आफ्टर दैट इट वॉज अबाउट मुझे नौ लखा मंगा दे रे. मतलब बॉलीवुड ने भी हमें रिलेशनशिप का पूरा पूरा सिलेबस जो है ना दे दिया है. पहले सिंपली कहा कि दिल दो, यू नो गो क्रेजी अबाउट दैट पर्सन, अब फिर थोड़ा थोड़े गिफ्ट भी देने बनते हैं. क्यों वोंट ऑल दी फीमेल्स अग्री विद मी, एम आई राइट और एम आई राइट? हाँ मैं राइट ही हूँ, मुझे पता है. वैसे इस लड़कियों को ही गिफ्ट लेना बहुत पसंद है, बट आजकल आई थिंक इट्स इक्वालिटी का जमाना है, लड़के भी उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं. नहीं, गिफ्ट की जो हैप्पीनेस होती है ना, बेसिकली इट डजंट मैटर कि आपको नौ लखा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट इवन चॉकलेट फ्लावर्स यू नो कुछ भी बेसिक मिल जाए चलेगा, दौड़ेगा राइट. इट जस्ट शोज द एफर्ट कि किसी ने किसी को बेसिकली दिल से कुछ दिया है. अभी प्लीज आप प्रेशर मत लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि नौ लखे का हार ही आपको देना पड़ेगा. कभी कभी एक कॉफ़ी ऐसा मेंशन, वो भी बहुत कुछ यू नो थॉट एक्सप्रेस कर देती है. तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, सबसे यादगार गिफ्ट जो आपको मिला या जो आपने किसी को दिया, यू कैन लेट मी नो अबाउट दैट. कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मे बी इट्स गोना रिवाइव लॉट ऑफ योर ओल्ड मेमोरीज. यही मेरा आज का टारगेट है, जितनी पुरानी पुरानी आपके दिल की बातें हैं ना वो आज ज़रूर निकलेंगी. दिस इज शीना और आप बहुत ही खूबसूरत मौसम में मुझे ये बताइए कर क्या रहे हैं. आई एम श्योर आज का दिन होता है, लॉट ऑफ पीपल यू नो द ईदर ट्राइंग टू फिनिश ऑफ द ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि उन्हें लगता है यार संडे को चिल मारेंगे, या कई ऐसे भी होते हैं कि नहीं चलो कुछ नहीं करते, मतलब गार्डन में बैठते, इतना अच्छा मौसम है. कुछ लोग सो भी रहे होते हैं ट्रस्ट मी, और बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिस भी वे में ड्राइव कर रहे हैं यू नीड टू लिसन टू लाइक अ गोल, बस एक यही कंडीशन है. और बताइए क्या चल रहा है, लंच वंच हो गया? आई मीन आई वॉज जस्ट ड्राइविंग, तो मैंने नहीं किया है, तो यू कैन बेसिकली यू नो कुछ कुछ फोटो ही भेज दीजिए ताकि मैं कुछ खा लूँ. एनीवेज बट या दैट इट इज़ ऑल अबाउट, इट्स ऑल दी एक्सपेक्टेशंस, और ये एक्सपेक्टेशंस कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं होती हैं. और जैसे कि कहते हैं ना कि लड़कियों को इतना समझ में आता है कि अब थोड़ा सा कुछ कर दीजिए, ज़्यादा मत करिए, पर यू नो वॉट, पर बॉलीवुड की हीरोइंस हैं वो तो नौ लखा ही मांगेगी, इज़न्ट इट? बट आम सैलरी देने वाला बंदा नौ लखा शायद नहीं ला पाएगा. एनीवेज दिस वॉज जस्ट टू चिलैक्स योर माइंड. अभी ऐसा म्यूजिक बजेगा दैट इज़ गोना चिल योर मन, सो एंजॉय. दिस इज शीना, आई मीन कमिंग अप नेक्स्ट यहाँ भी पैसे की ही बात होगी, सो प्लीज बेयर विद मी. दिस इज शीना.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So yes, your £1 in British sterling can get you up to 128.25 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or by simply Yono SBI app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: We hit
3: Laika Gold.
2: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Laika Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Laika Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
4: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
5: डेजर्ट सफारी,
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
9: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
10: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99, exclusively at quality food stores.
11: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewellers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewellers, also at Belgrave Road, Leicester.
12: Bharatiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners like a radio network.
13: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
14: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कितना प्यारा गाना है ना, और वो कह रहे हैं कि तेरे जुल्मों से तम सर आंखों पर. आज की डेट में अगर इस गाने को गाया जाए तो कोई लेगा? एंड देन पीपल विल कम अप एंड से अभी तो इक्वालिटी का जमाना है, अभी क्यों किसी के जुल्मों से तम ले. बट दैट वॉज अ प्योर लव, इट स्टिल एग्जिस्ट बट इट्स जस्ट अ परसेप्शन, राइट. और ये खूबसूरत सा गाना वो स्पॉन्सर्ड बाई डेरी वैली एंड लॉट ऑफ सॉन्ग कमिंग इन. एंड येस, एज आई वॉज आस्किंग यू, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैव कम इन. आपको सबसे ज्यादा यादगार गिफ्ट जो आपको अब तक मिला है या आपने किसी को दिया है? और लोग बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं तो मैं इतना इमोशन नहीं क्रिएट करूंगी. लेट्स डू सम डांसिंग चांसिंग एंड देन वी विल कम बैक.
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली.
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर. विजिट happyhalwai.com.
1: ऑन रॉग विद गोल्डन रॉग.
3: ओ मेरी

0: On the vocals of Kishore Kumar, what a beautiful, beautiful, beautiful सा गाना, ओ मेरी शर्मीली. मैं बिल्कुल भी शर्मीली नहीं हूँ. आजकल शर्मीली लोग बहुत कम ही मिलते हैं. वो कहते हैं कि यू नो, जो ज़्यादा शाई होता है वो ज़्यादा स्मार्ट होता है. तो डू यू बिलीव इन दैट और नॉट? एंड कमिंग बैक टू जो हम पूछ रहे थे आपसे कि एक आपको खूबसूरत सा कोई ऐसा गिफ्ट मिला हो जो आपने दिया, तो इंटरेस्टिंग आंसर्स हैव कम इन, राइट? और लोग थोड़े इमोशनल भी हो गए हैं. एंड यू नो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि बहुत ही अच्छा हमें कुछ ना कुछ मिले. एंड यू नो वॉट जे इज सेइंग कि मुझे तो एक प्यारी सी स्माइल मिल गई और मैं वहीं पर ही बस मेरा जो है ना एंड हो गया. सो येस, देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसके साथ ये छोटे छोटे जेस्चर्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें ना, तो आप थोड़ा एक रोमांटिक डेट बना सकते हैं. आई विल गिव एन अपॉर्चुनिटी और बताइए, इतनी मेहरबान हूँ आज मैं, क्योंकि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप विद सिफत इवेंट्स और इनके साथ एक डिवाइन सोलफुल म्यूजिक जो परफॉर्मेंस होने वाली है विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा, उसका एक कॉम्पिटिशन होगा. एंड इट विल बी राइट अंटिल आई एम देयर फ्रॉम 1 to 4, कभी भी हो सकता है. तो अपना जो बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि अपनी सीट छोड़ के मत जाइए, जहाँ भी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड को सुनते रहिए. हु नोज, यू गेट an opportunity and you take your better half or your friend or anyone you want to take and you might win.
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: आओ आओ. From Tridev, a lovely, beautiful Ghana.

0: सबसे निराला
1: मैपस्टर पानीपुरी और पानीपुरी का पानी.
2: All Mapster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Chawal ho best, sab kar test, Disha Rice ka hai zamana.
4: Disha Basmati Rice. Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
6: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. पूरी एंड आमरस और मिल्कशेक फुल टेस्ट इतना प्योर हो जाए हैप्पी सोल.
7: मैंगो सीजन हैज अराइव्ड. यू आर आल्सो विद जैमिन्स मैंगो पल्प. नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स, ओनली प्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैंगोस.
6: जैमिन फूड्स मैंगो पल्प अवेलेबल नाउ.
8: हेलो लंदन, द वेट इज ओवर. कल्याण ज्वेलर्स इनवाइट्स यू टू द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ अ स्पेक्टेकुलर न्यू शोरूम. जॉइन अस ऑन ग्रीन स्ट्रीट अपटन पार्क दिस July 31st. कल्याण ज्वेलर्स आल्सो एट बेलग्रेव रोड लेस्टर.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: on the 90s era. This movie, Soldier, with Zinta. Yes, a true debut. जबकि दिल से थी थिएटर में फर्स्ट, बस सोल्जर ऐसी मूवी थी जो कि फर्स्ट फिल्म थी पीटी जिंटा की एक्चुअली साइंड एंड फिनिश्ड. बहुत ही खूबसूरत लगी थी, एंड स्पेशली दिस गाना, यू नो, विद बॉबी देओल वेयरिंग अ ब्लैक आउटफिट और वो घोड़े पर आ रहा है, यू नो, ऐसे जैसे सबके सबकी लड़कियों के वो दिल में होता है कि आएगा कोई ना कोई ज़रूर आएगा वो सफ़ेद घोड़े पे, एंड देन अल्टीमेटली द रियलिटी समथिंग डिफरेंट. बट यस, बहुत ही खूबसूरत सी मूवी थी, पर गाने बहुत खूबसूरत थे. और उनके वार्डरोब की जो भी बात करें ना, दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 90s, दैट वॉज रियली वन ऑफ द बेस्ट आउटफिट्स जो उन्होंने उस मूवी में पहने थे. और बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी थी. बट आपको ये मूवी पसंद थी या नहीं थी, कैन लेट मी नो अबाउट दैट. बट राइट नाउ लेट्स नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ करेंसीज.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Looking at the currency rate update today, £1 is going to fetch you 128.74 Indian rupees, 370.2 Pakistani rupee, 447.79 Sri Lankan rupee, 164.68 Bangladeshi taka, 88.10 Afghan Afghani, 172.52 Kenyan shilling and 1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Golden Pounds is trading at £97.95 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Is Leica. This is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.

0: मधुगल सफर जॉली मुखर्जी एंड सपना मुखर्जी के साथ चाहे मेरी जान तू ले ले फ्रॉम एन आइकॉनिक मास्टरपीस मूवी दयावान. You all know about this movie. It was basically a remake of a masterpiece. जिस फिल्म में को ऑफिशियली हिंदी में बनाया गया था और इसकी जो ओरिजिनल थी वो मनी रत्नम ने एक मूवी बनाई थी तमिल मूवी नायकन. सो उसमें कमल हसन थे. बहुत ही खूबसूरत सी मूवी भी थी एंड विनोद खन्ना वॉज लुकिंग सो डैशिंग. यू नो एवरी वन वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट दी केमिस्ट्री एंड सम इंटरेस्टिंग सीन्स अबाउट माधुरी दीक्षित एंड विनोद खन्ना इस मूवी में. पर बहुत ही जो ये मूवी को है काफ़ी अप्रिसिएशन मिली थी एंड स्पेसिफिकली आई वुड से विनोद खन्ना. एंड टॉकिंग अबाउट दीक्षित शी ऑलवेज लुक एलिगेंट. वो जो भी परफॉर्मेंस करती है ना इट्स ऑलवेज आउट ऑफ द वर्ल्ड. एंड हैव यू गाइज एवर थॉट अबाउट माधुरी दीक्षित ने ये मूवी की विनोद खन्ना के साथ एंड देन शी वॉज पेयर्ड विद हिज सन अक्षय खन्ना एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक लेस देन अ डिकेड. 10 साल से कम ही था बेन इन 1997 उनकी एक रोमांटिक मूवी मोहब्बत आई थी. सो कुछ भी हो सकता है. दिस इज बॉलीवुड.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लुकिंग एट द करेंसी अपडेट टुडे. £1 जो है अभी अगर आप एक पाउंड को देखेंगे तो 128.25 इंडियन रुपीज देगा. एंड येस इट्स ऑल अबाउट द SBI. यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड येस योनो SBI UK ऐप राइट नाउ.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: It's official. Tesco Pet Insurance is the dogs, biscuits. At Tesco, we love pets, and we've been awarded a Which Best Buy for all our lifetime dog and cat policies with over £5,000 cover. We offer a range of different policies and cover levels, so your cat gets the cream of pet insurance. To get a quote, search Tesco Pet Insurance. Cats and dogs aged 8 weeks or over. Monetary limits, excesses and exclusions apply. Provided by Pinnacle Insurance Limited.
3: Like our gold. This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
4: Goodbye.
3: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.

0: You're locked into Like a Gold with Sheena on the vocals of Nazi Hassan. A beautiful gana, Disco Diwane, sponsored by Dairy Valley.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
0: एंड हां जी आ गया खूबसूरत सा मौका और खूबसूरत सा पल. Who knows you can be the winner too. Laika Radio Network teams up with Sifat Events and Soul Jam London for a night of divine soulful music ke saath with the Prince of Ghazals, Ranjit Rajwada. Aur ye ho raha hai Harrow Arts Center mein Thursday 30th of July at 7 PM. Aapko karna kuch bhi nahi hai, bahut hi simple sa kaam hai. You need to send the word Ghazal to be in it, to win it. So aap WhatsApp number pe bhejiye 7424232323 pe Ghazal word likh ke. और अगर मतलब वो कहते हैं ना कि निराश होने की जरूरत नहीं, इफ़ यू डोंट विन डोंट वरी, यू परचेज टिकट्स फ्रॉम harrowart.com. टिकट्स आर प्राइस फ्रॉम £25. इफ़ यू यूज़ द कोड लाइका रेडियो तो डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा और हम लोगों को डिस्काउंट डेफिनेटली बहुत पसंद है. तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा टिकट्स पे ऑनलाइन. जो विनर्स की टिकट्स हैं इट विल बी ईमेल्ड अक्रॉस, सो प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल एड्रेस. बट अगेन अभी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो विनर होगा उसी को ईमेल एड्रेस देनी है. अभी आपको सिर्फ वर्ड गज़ल लिख के जो है भेज देना है. जल्दी जल्दी भेजिए. टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई. वी विल रैंडमली सेलेक्ट द विनर. हु नोज, पेयर ऑफ टिकट. ओएमजी, 30th ऑफ जुलाई 7 PM एट हेरो आर्ट्स सेंटर. सो डोंट वेट.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
0: वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गाना ऑन द वोकल्स ऑफ किशोर कुमार फ्रॉम द मूवी गोलमाल दैट डिफाइंस द लाइफ, इट डिफाइंस द टाइम, इट डिफाइंस द जर्नी. कि जिंदगी जो है ना उसको प्लीज जिए, आज को जिए, तभी तो उसको प्रेजेंट कहते हैं ना. क्योंकि आने वाले पल की तो किसी को भी खबर नहीं है और आने वाला पल भी तो जाने वाला होता है. तो हो सके तो इस पल में एंजॉय करिए. हैव फन. दिस इज शीना.

0: किशोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

0: पैसा ही है पैसा. डेफिनेटली दैट्स ट्रू. हो तो मुसीबत और ना हो तो मेरे ख्याल से उससे भी बड़ी मुसीबत, क्योंकि आजकल पैसे के बिना कुछ भी नहीं मिलता है. अरे भाई एक स्माइल भी नहीं मिलती है. आई नो लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग द शो वर सेइंग हाँ मिल जाती है, बट यस इट्स ऑल अबाउट द मनी राइट. मनी है तो हनी है. दिस इज शीना एंड टॉकिंग अबाउट वी प्रेड यू नो बैक टू बैक. कोई मिल गया उसके बाद पैसा ये पैसा इन दिस मूवी वॉज बेसिकली कर्ज, और कोई मिल गया वॉज कुछ कुछ होता है. टॉकिंग अबाउट वेन वी वर ट्रांजेक्शन फ्रॉम कोई मिल गया टू पैसा ये पैसा, बहुत ही खूबसूरत से हो रहा था. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम 90s से 80s में जा रहे हैं, है ना. वही एनर्जी थी, वही बेसिकली वाइब थी. चलिए बात करते हैं मूवी कर्ज की, बिकॉज मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है. बहुत कम पुरानी फिल्में में मतलब ऐसी मुझे फिल्म जो एक ऐसी लगी थी जो हमेशा मैं यू नो दिस ऑलवेज लाइक रोंगटे खड़े कर देती है. दिस वॉज वन ऑफ दैम. एंड इफ़ यू आई डोंट नो आप कितने लोगों को ये बात मालूम है इस मूवी के बारे में, क्योंकि इन बॉलीवुड के उस वक्त के में 80s में जो कर्ज का मतलब एक्चुअली इट मीन्स डेट इज ऑफ्टन कंसिडर एज एन अनलक्की या फिर जिंक्स नेम था. फिर भी बेसिकली ये मूवी का नाम रिलीज हुआ और इवेंचुअली गेन लेजेंडरी स्टेटस. और उसके बाद जितनी भी उनकी मूवीज के रीमेक बने यू नो इंक्लूडिंग दैट टाइटल, वो 2002 में एक आई थी कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रूथ एंड हिमेश रेशमिया थे उसमें, एंड 2008 रीमेक, दे ऑल बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस. मतलब ये टाइटल ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया था. पर दो ओजी वाली फिल्म थी उसको आई एम श्योर यू नो कोई भी नहीं मैच कर सकता. एंड देर वर लॉट ऑफ यू नो इंस्पायर्ड मूवीज आई से, जैसे ओम शांति ओम आई थी शाहरुख खान की, तो वो भी अगर आप देखें तो दैट वॉज ऑल अबाउट यू नो यही स्टोरी लाइन थी. बट आई हैव टू से दैट दी ओजी विल ऑलवेज बी ओजी. एंड इन दिस व्हेन दिस मूवी वॉज बीइंग दिस रीज डिस्पाइट इट्स मैसिव पॉपुलैरिटी टुडे, कर्ज जो उस टाइम पे हिट नहीं थी, इट हैवली स्ट्रगल ड्यूरिंग इट्स इनिशियल रिलीज, क्योंकि ये फिरोज खान की ब्लॉकबस्टर मूवी कुर्बानी के साथ रिलीज हुई थी. And obviously, Kurbani was dominating the theaters at that point of time. But a very interesting movie, I have to say, especially the star cast. Tina Murim looked beautiful in that. Rishi Kapoor, to, ooh la la. Even I liked Raj Kiran, right? And because of ye age ke gap or replacement, mein Subhash Gai ne socha ki basically mujhe old superstars nahi chahiye, nahi to Dharmender aur Vinod Khanna aise role ke liye ho sakte the. उन्होंने रवि वर्मा और मोंटी के रोल के लिए ऋषि कपूर को लिया और राज किरण को लिया. बेस्ट चॉइस, वही कहते हैं ना, दीज डायरेक्टर्स कैन सी जो नॉर्मल जनता नहीं देख सकती. बट अ ब्यूटीफुल मूवी. लेट मी नो आपने मूवी देखी है या नहीं देखी है. एंड डू यू एक्चुअली बिलीव कि जो है ये पूर्ण जन्म, पुराना जन्म, नेक्स्ट जन्म, ये होता है कि नहीं होता है? बिकॉज आई एम स्टिल कन्फ्यूज. आई कैन मैनेज दिस लाइफ एंड एम थिंकिंग अबाउट मैं पहले क्या थी और आगे क्या बनूंगी. ऐसे अपा ना कौन सोचेगा. दिस इज शीना.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.25 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or by simply using Yono SBI mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: We hear Leica Gold.
3: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: मॉम, आई डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
8: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure Herbal Care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
7: So where do we find something like that now?
8: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our elders use it.
9: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
10: Recalculating. Family issue ahead. Property paperwork on the left. Immigration deadline approaching. Business dispute in 200 yards. When life takes an unexpected turn, let Rack Law Solicitors guide you with clear, trusted legal solutions. Family, property, immigration and corporate law handled with care and expertise. Call 0203 345 2000. Rack Law Solicitors. Your matters, our expertise.
11: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान. फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साफो ट्रेवल. At all protected.
13: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
14: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99. Exclusively at quality food stores.
16: Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026. Come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208-767-7547.
17: Leica Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold. Aur online suno leicagold.com pe.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
19: Oh, अरे कोई सांस तो छेड़ो. झुका के सर को पूछो, मैडम, how do you do?
20: नहीं नहीं नहीं, भाभी, ऐसे नहीं. एक्टिंग करके बताओ.

0: यू।
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ,

0: The artist of the week this week is none other than the Dream Girl, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, वो सबकी ड्रीम गर्ल पहले भी थी, अब भी हो रहेंगी भी, राइट? And this one is one of her best performances, सत्ते पे सत्ता, जहाँ एटिकेट सिखा रही है अपने देवरों को. समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, but beautiful गाना, beautiful movie. So आप भी झुकाइए सर और enjoy करिए.
1: Like a gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Ek khoobsurat sa romantic sa gana. Taking you to the journey of unplugged music. Alka Yagnik and Kumar Sanu. What a duo.

0: is Laika.
1: What a beautiful track from the movie Earth. कहीं ना कहीं ले जाता है गाना, right? And Jagjit Singh and Chitra Singh especially. इतनी अच्छी आवाज फिर नहीं मिलने वाली. Deep poetic lyrics. और इस फिल्म में डेफिनेटली ये ट्रैक जो है एक अनफॉरगेटेबल साउंड ट्रैक बन गया था. एंड एक आइकॉनिक वो गजल कपल का ट्रैक जो था ना, वो जगजीत और चित्रा के जी को मिला था. एंड यस, अर्थ वॉज डेफिनेटली अ मास्टरपीस महेश भट्ट की. और एक तरीके से तो मैं कहूँगी एक इंडियन पैलेट सिनेमा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था. बेसिकली वो एक मूवी थी जो बहुत ही अनफिल्टर्ड थी. इट टॉक्ड अबाउट यू नो रिलेशनशिप्स, इट टॉक्ड अबाउट दैट इज व्हाट इट सेड कि ये महेश भट्ट की ही जिंदगी के ऊपर आधारित थी. उनकी खुद रियल लाइफ जो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर था उसी पे था. बट आई हैव टू टेल यू द गाना इज सो डीप, सो मीनिंगफुल. एवरी टाइम यू लिसन टू इट देयर इज समथिंग न्यू जो आप इस गाने से सीखते हैं. हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई गम होते हैं लेकिन वो कैसे छुपाते हैं, दैट इज व्हाट दिस गाना डिफाइंस अबाउट. यू आर लिसनिंग टू शीना ऑन लाइक अ गॉड. बहुत ही कम समय रह गया आपसे यू नो बाय बाय करने का, पर जितना भी है चलिए एंजॉय करते हैं इकट्ठे, राइट?
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Laika Gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danu. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Chawal ho best. Sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
12: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
13: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
14: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
13: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
16: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk. Minar Jewelers, Best Independent Retailer 2026. Come and find out why. Best jewelry for the bride and groom. Phone 0208-767-7547.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Looking at the currency update today, £1 is going to fetch you 128.73 Indian rupee, 370.32 Pakistani rupee, 447.87 Sri Lankan rupee, 164.54 Bangladeshi taka, 87.97 Afghan Afghani, 172.55 Kenyan shilling and 1.33 US dollar.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Looking at the gold rate today, it's 97.95 per gram in pounds.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
0: This is Laika.
1: हाँ जी, और मेरा वक्त तो आ गया. Before I go, I have to tell you lot of things. बहुत सारी लंबी लिस्ट है और मैं जाने से पहले खूबसूरत सा गाना भी आप लोगों के लिए जरूर जरूर प्ले करूंगी. But yes, I have to tell you thank you so much for so much love. बहुत ही खूबसूरत सा वक्त गुजरा है. I'm sure आप लोगों का भी उतना ही खूबसूरत सा गुजरा होगा. एंड हमेशा एक अच्छे थॉट के साथ जाना हमेशा अच्छा रहता है, राइट? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर थॉट के पीछे कुछ ना कुछ तो हर एक के दिमाग में चल रहा होता है. बट आई जस्ट हैव टू से, वीकेंड है, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा आराम कीजिए और थोड़ा वक्त ज़रूर अपने साथ भी बिताइए, क्योंकि ये खूबसूरत से पल ज़रूर बिताने ज़रूरी हैं अपने साथ. दैट्स कॉल्ड मी टाइम, राइट? इफ़ यू हैवन थॉट अबाउट इट तो सोचिए और बिताइए. जो खुशी, जो मन को खुशी देती है, बस वही करिए. यू नो, कहीं मैं एक बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी लाइन पढ़ रही थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. It says कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता. We all have so much of chaos going on in our life. कोई भी दिन हमें परफेक्ट लगता ही नहीं है, वो भी नहीं सकता यार. अगर परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर यहाँ थोड़ी ना होंगे, राइट? इस दुनिया में क्या करेंगे. लेकिन हर दिन में एक परफेक्ट गाना जरूर मिल जाता है. Am I right or am I right? कभी कभी लाइट भी लीजिए लाइफ को. तो दिन परफेक्ट होना हो, बट अपना एक खूबसूरत सा फेवरेट सा जो गाना होता है ना, अगर आप उसको सुन लें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आधी की आधी ऐसे ही जो हैं ख़त्म हो जाती हैं. एटलीस्ट थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर कोई पुरानी मेमोरी, कोई पुरानी याद, कोई पुरानी चुलबुली सी, मस्ती सी वाली कोई ना कोई कहानी याद आ जाती है. सो यस, दिन परफेक्ट होना हो, लेकिन हर दिन में एक परफेक्ट गाना ज़रूर मिल जाता है. एंड ऑल सॉर्ट ऑफ सच म्यूजिक यू कैन फाइंड ऑन लाइका गोल्ड एंड ऑल्सो ऑन लाइका रेडियो. तो लाइका रेडियो नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए. This is Sheena saying bye-bye. हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. Definitely बहुत जल्दी मिलेंगे. और I just wanted to say thank you so much for listening. और आगे after 4 o'clock it'll be beautiful, beautiful Sarita ji on air. तो उनको भी definitely सुनिएगा.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
5: ये है
6: Laika Gold.
7: Hello, London. The wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers. Also at Belgrave Road, Leicester.
8: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
9: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
8: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
9: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
10: Hare Krishna.
11: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Laika Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods. Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners, Leica Radio Network.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Dreaming of paradise?
0: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
1: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays. All at exclusive prices.
0: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
1: At all protected.
2: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
3: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में।
2: सच?
3: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू, सब एक ही जगह।
4: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इल्फोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ India, now in Ilford.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNC

0: गुड आफ्टरनून, बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और मुझे उम्मीद है इंजॉय भी किए होंगे। मैं हूँ सरिता सबरवाल, एवरी सैटरडे एंड संडे बिटवीन द आवर्स ऑफ 4 and 7 आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। तो आप भी अपनी हाजिरी लगवा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कहाँ बैठे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पहले दो गीत हमने जुगल हंसराज की फिल्मों से चुने जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। उनकी ज़िंदगी में ऐसे दिन, वेल इनका बर्थडे एक्चुअली कल है, मैंने आज ही मना दिया, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी डेट की गलती लग जाती है ना। 26 जुलाई मैं सोची जा रही हूँ, आज 26 जुलाई है पर आज तो 25 जुलाई है। चलिए जुगल हंसराज जी को एडवांस में ही हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। और बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट भी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, लाइक शेखर कपूर की मासूम इन 1983 एंड देन कर्मा में 1986 में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आए थे एंड सल्तनत में ही फीचर्ड एज ए मॉडल फॉर टीवी एंड प्रिंट as a child and appeared in notable campaigns and he made his acting debut as an adult कौन सी फिल्म थी वो, आ गले लग जा 1994 की फिल्म थी एंड सलाम नमस्ते में, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, ऐसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। पर इनका वो गाना था ना लकड़ी की काठी, वो बहुत पसंद किया जाता, बहुत प्यारी लिखती थी उर्मिला मातोंडकर भी एंड जुगल हंसराज, दोनों पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था मासूम के लिए। वो गीत मैंने नहीं शामिल किया लेकिन सल्तनत 1986 की फिल्म थी, ये गाना उन पर पिक्चराइज नहीं हुआ था लेकिन ही वॉज इन दैट फिल्म, सो उन्हें हम एडवांस में ही बहुत बहुत बधाई देते हैं। हाउ आर यू टुडे, आई होप यू आर वेल, जहां भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करते रहें। अगर किसी वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। और इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो चेयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय, जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो ट्राई करती हूँ चुन चुन कर मैं आप तक पहुँचा दूँ। उम्मीद करती हूँ ये दोनों गीत आपको पसंद आए। मेरे साथी जो ऑलरेडी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अपने होने का प्रमाण उन्होंने दे दिया है, यानी कि अपने होने का एहसास दिला दिया है, उन सबका मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Well, your £1 in British sterling can get you up to 128 rupees and 30 paisas. Wow. And aapko pata hai na ki you can exchange money in branch online or SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
2: Gold. This is a national alert from Flixbus. We'd like to express... a few things, because it's time to move on from that ex.
3: Goodbye.
2: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
4: Dad!
5: What's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.

0: on Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: बहुत प्यारा गीत था एंड जब जब भी मैं इस गीत को सुनती हूँ एंड मैं गुनगुनाती हूँ साथ साथ एंड आई रियली लव द वे रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया. बता दें कि विश्वजीत एंड माला सिन्हा पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था. महेंद्र बरजारिया जी साउथ हैरो से आपने मुझे मैसेज लिखा और आपने कहा कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी लगती है, सारे गाने बहुत अच्छे हैं. ये गाना एक्चुअली आपने भी लिख कर भेजा कि माला सिन्हा और विश्वजीत पर ये गाना पिक्चराइज हुआ. थैंक यू एवर सो मच. और मेरे सभी साथी जो मैसेजेस भेज रहे हैं, थैंक Thank you.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: भाई आपने बिल्कुल सही पहचान लिया कि आज के गीतों में कौन सा वर्ड बार बार सुनने को मिला. थैंक यू एवर सो मच. और अगला गीत 90s की फिल्म का, लेकिन इस गीत के बिना तो फिर अधूरा सा रह जाएगा. और सबकी फरमाइश भी है कि ये गीत प्ले होना चाहिए. कौन सा हो सकता है, याद कीजिए. किरण वाला.
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: पता चल गया ना किस गीत की बात कर रही हूँ. यस, डर. किरण, शाहरुख खान की फिल्म. बहुत प्यारी फिल्म थी. जूही चावला थी इस फिल्म की हीरोइन. तो नजर पर आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं जो मैंने चुने, या आपकी हटकर है कुछ पसंद, बता दीजिए.

0: प्यार हुआ बदनाम गीता फिल्म का नाम। इस फिल्म का गीत आपने कुमार सानू की आवाज़ में सुना। इसकी दो वर्जन है, एक साधना सरगम ने गाया और एक कुमार सानू ने, और मुझे ये गीत काफ़ी पसंद है। तो मुझे उम्मीद है मेरी पसंद आपकी पसंद ज़रूर बनी होगी और आपने गीत को एंजॉय किया। मेरे साथ ही अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से अपने मैसेजेस भेजते रहिएगा। और अब हम पहुंचेंगे न्यूज़ के बिल्कुल करीब। न्यूज़ के उस पार मैं सरिता बी आर चोपड़ा जी को याद करेंगे नेक्स्ट आवर में, लेकिन पहले दो गीत उनकी फिल्मों के नहीं होंगे। आइए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: Top stories this hour. More than 200,000 people in France and Spain have been forced to flee rapidly spreading wildfires. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has warned, although a change in wind direction has helped firefighters who are battling flames near Madrid, conditions may suddenly change. In France, people have been evacuated from homes in the suburbs of Bordeaux. Regional official Sophie Broca says significant help is on its way.
3: This fire that we've been living with and fighting against here in Gironde for 3 days has reached an unprecedented magnitude. To combat it, we will receive extremely significant national reinforcements.
2: Meanwhile, residents in a village in the Cairngorms say a raging wildfire has left them angry, upset and frustrated. Hundreds of residents have been moved out of Nethy Bridge after evacuation orders were issued. Smoke's now thought to be blowing towards Aberdeenshire and the North Sea. Kinley Francis owns a tour company in Orkney.
4: We could see the smoke 4.5, maybe 5 miles away from where we are. It is significant, the impact that it's had on the area. This is something of a, it looks like an apocalyptic scale. I just hope that the government can do their best to help these people up here.
2: Two teenagers have been arrested on suspicion of murdering a 17-year-old boy who was stabbed to death in Luton yesterday. Police say two boys were first arrested on suspicion of violent disorder and then rearrested on suspicion of murder. A 14-year-old boy is helping police with their inquiries after a hoax threat was made against an aircraft travelling to Manchester Airport. RAF Typhoons were scrambled to intercept the Qatar Airways flight last night. Youth protesters in India have agreed to end their demonstrations after talks with the government. The self-styled cockroach movement was triggered by an exam leak scandal. And letters from a young Morrissey are expected to fetch up to £22,000 at auction. In one, he claims he was always a genius, but nobody listened. From Sky News, I'm Ruth McKee.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: भाई बहुत गर्मी है लंदन और आसपास के इलाकों में। मैक्सिमम टेम्परेचर 28, सनी इंटरवल्स एंड जेंटल ब्रीज, एंड लो विल बी 18, एंड इन मैनचेस्टर ठीक ठीक है, 19 डिग्री है टेम्परेचर, लाइट रेन्स एंड शावर्स भी हैं वहाँ, एंड जेंटल ब्रीज भी चल रही है। एंड मिडलैंड्स में लाइट क्लाउड्स एंड लाइट विंड्स, मैक्सिमम 26 एंड लो विल बी 14 डिग्री सेल्सियस। अपने दिल का मौसम अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
5: Like a gold.
1: Sarita Samoa.
0: जी हाँ, प्रोग्राम के सेकंड आवर में हमने कदम रखा है। प्रोग्राम के इस आवर के पहले दो गाने मैंने उन फिल्मों से चुने हैं जो आज ही के दिन रिलीज हुई, और फिर हम बी आर चोपड़ा जी को याद करेंगे उनकी डेथ एनिवर्सरी पर, जिन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं, उनमें से कुछ चुने चुने गीत आप तक पहुँचाऊंगी।
1: Like a gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
6: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
0: TravelHub.
6: At all protected.
1: Leica. Sarita Sabharwal.

0: आज ही के दिन रिलीज हुई थी 25th of July 1975। फिरोज खान साहब ने इसे डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस भी किया था एंड ही एक्टेड इन द फिल्म एज वेल। हीरोइन थी इनकी हेमा मालिनी, साथ में रेखा भी थी एंड नासिर हुसैन, प्रेम नाथ, बहुत सारे एक्टर्स थे। बहुत प्यारी फिल्म थी, फिल्म का संगीत भी बहुत ज़बरदस्त कल्याण जी आनंद जी का, और सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे। ख़ास तौर पर ये गाना तेरे चेहरे में वो जादू है एंड मेरी गलियों से लोगों की यारी, वो गाना भी बहुत पसंद किया गया एंड देन क्या खूब लगती हो, वो गाना भी बहुत प्यारा था। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, सवाल जवाब थे, वो भी गाना बहुत खूबसूरत था और गीत लिखे थे इंदिवर साहब ने। ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई 1975। लेकिन जिस गीत से मैंने आज के सेकेंड आवर का आगाज़ किया, वो फिल्म भी आज ही के दिन रिलीज़ हुई बट 1990 में, 25th of July 1990 में आई थी फिल्म शेषनाग। इस फिल्म को के आर रेड्डी ने डायरेक्ट किया था एंड इस फिल्म में काम किया था। जितेंद्र ने, ऋषि कपूर, रेखा, माधवी एंड मंदाकिनी थी इस फिल्म का हिस्सा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत आपने सुना, बहुत प्यारा सा गीत, और गीत में आवाज़ किसकी थी, आसमानी भेजा जमीन पर, सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें थी। आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे इस फिल्म के गीत। इसी फिल्म में और भी गाने थे बहुत अच्छे, ओ मेरे दुश्मन, छेड़ मिलन के गीत, मितवा, तेरे हाथ ना छोड़ूंगी, ये गाना भी काफ़ी मशहूर हुआ था। सो उम्मीद करती हूँ मेरे पसंदीदा दो गाने आपको भी पसंद आए। मेरे वो साथी जो बहुत सारे मैसेजेस लिखकर भेजे और एवरी सॉन्ग के बाद मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। संध्या जी, आपके पति देव ठीक नहीं हैं एंड हितेन जी के लिए मैं यही प्रे करती हूँ कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए। उमेश जी धन्यवाद। साहिद साहब, आपने लेस्टर से मुझे मैसेज भेजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैस्मिन भारती, नरेन कैंट एंड अमिता जी, सोहिनी रावल जी, मिसेस शेख आप भी सुन रही हैं एंड आप कौन हैं, कभी कभी आपके नाम नहीं आते हैं तो फिर मेरे को वो थे हरजिंदर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी सुन रही हैं प्रोग्राम। इंतशाब, हंसा वोरा जी, अर्जन जी, संतोष जी, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, उल्लाश इन टोरंटो, सहर, विमल रायन जी, आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और भी बहुत सारे नाम है, विजय गनोवा जी, आप सबका धन्यवाद। अब दो गानों में से मैं चुन नहीं पा रही हूँ कि कौन सा गीत प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अब इस आवर के बाकी गीत मैंने बी आर इशारा जी की कुछ फिल्मों से चुने हैं। बी आर इशारा फिल्म मेकर थे और आज उनकी पुण्यतिथि है, 25th of July 2012 में एट एज ऑफ 77 ही पास्ड अवे एंड हिज फुल नेम वॉज बाबू राम इशारा, लेकिन बी आर इशारा के नाम से जाने जाते थे एंड बॉर्न एज रोशन लाल शर्मा। तो उनकी कुछ एक फिल्मों के गीत मैंने चुने हैं। तो एक फिल्म थी एक नज़र, जिसमें अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन ने काम किया था एंड बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी वो फिल्म। उस फिल्म के दो गीत मुझे पसंद हैं, एक पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, और दूसरा गीत है एक नज़र प्यार को चाहिए बस एक नज़र एक नज़र, दैट्स द टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म। तो आपको कौन सा गीत ज़्यादा पसंद है, ए एक नज़र एंड बी पत्ता पत्ता, कौन सा गीत आपके दिल के करीब है, जल्दी से मुझे लिखकर भेज दीजिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, आज आपको एक पाउंड के बदले मिल सकते हैं 128 rupees and 30 paisas। याद है ना किस तरह से आप पैसे ट्रांसफर करा सकते हैं, आप ब्रांच में जा सकते हैं, ऑनलाइन कीजिएगा या फिर SBI Yono मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड किया तो उसके जरिए कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? Get full marks on the full shop for back to school with 25% off all school uniform with club card prices this week. Shop in store or online now. If only figuring out the kids' homework was that easy. Tesco, every little helps. Selected F&F kids bags and coats included. Club card app required. Ends 26th of July.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
3: Gold. If you're ready to grow your business, at Barclays we say, let's go. From opening that second store to boosting your production, let's get growing. Whatever the goal for your business, with our £22 billion lending fund, we're ready to back UK businesses like yours. Search Barclays Business Banking. Barclays, backing your future. Subject to normal lending assessment, status and application. Terms and conditions apply.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.co.uk. Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02 08 922 3344 24-hour line.
6: Watford में dinner plans, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
7: तो आइए Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
6: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala से biryani तक, fresh bread and refreshing drinks. हर bite में लाजवाब flavors और vibe बिल्कुल premium.
7: Friends, family या special night out, इसे यादगार बनाइए. Visit Vivek House Watford. Call 01923227274. Book your table today.
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
10: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
11: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
10: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
12: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
13: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99. Exclusively at quality food stores.
14: Like a Gold. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइक अ गोल्ड .com पे. फील गुड ट्रैक
15: brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Mere bahut se saathiyon ko ye geet बहुत प्यारा लगा, बहुत दिनों बाद सुना है इस गीत को. बी आर इशारा जी को याद किया हमने इस गीत के जरिए. बी आर इशारा वॉज द ट्रेल ब्लेजर ऑफ इंडियन सिनेमा हु इज़ नोन फॉर हिज फिल्म टेकिंग द इश्यूज दैट आर अदरवाइज एब्सेंट इन मेन स्ट्रीम सिनेमा. सो उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जो बहुत बोल्ड थी. उन्हीं में से एक फिल्म थी चेतना, जिसका गीत आपने अभी अभी सुना. एंड इनके बहुत से ऐसे सोशल इश्यूज़ को लेकर भी, जो टैबू सब्जेक्ट होते हैं उन पर उन्होंने फिल्में बनाई, लाइक चेतना, एक नज़र, ज़रूरत, मिलाप. सारे गाने बहुत अच्छे उन सभी फिल्मों के. बी आर इशारा वॉज बॉर्न एज रोशन लाल शर्मा ऑन सेप्टेम्बर द 7th 1934 इन हिमाचल प्रदेश, एंड हिज निक नेम वॉज बाबू विच ही यूज वेन ही बिकेम अ फिल्म मेकर. तो बाबू राम उनका असली नाम था, तो बाबू राम, बाबू उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, निक नेम था उनका, तो उन्होंने वही नाम रखा अपना फिल्मों के लिए भी. और ये भी बता दूं कि वो घर से दौड़ कर गए थे बॉम्बे, क्योंकि वो फिल्म मेकर बनना चाहते थे. इन बॉम्बे ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज ए स्पॉट बॉय एंड ही देन मेट द लिरिसिस्ट कमर जलालाबादी जी. उनके साथ उनको असिस्ट भी करते रहे एंड इवन गेव हिम अ प्लेस टू स्टे, उन्होंने अपने पास रखा. एंड वाइल विद कमर जलालाबादी ही स्टार्टेड राइटिंग टू, और फिर इन्होंने स्टोरीज लिखना शुरू किया. ही असिस्टेड मैनी राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, मोस्ट नोटेबली बासु भट्टाचार्य जी इन तीसरी कसम इन 1967, एंड मेड हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू विद द स्मॉल फिल्म आवारा बादल इन 1964. और उसके बाद ही देन रोट द डायलॉग्स ऑफ फिल्म्स लाइक चांद और सूरज, स्पाई इन रोम एंड धरती कहे पुकार के. धरती कहे पुकार के भी दो गीत हैं जिसमें से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद आएगा. जी हम तुम चोरी से, वो गाना काफ़ी मशहूर हुआ था मुकेश अनलता जी की आवाज़ों में. और दूसरा गीत था जारे कारे बदरा बलमा के द्वार, वो गाना भी काफ़ी मशहूर हुआ था, लता जी ने गाया. इन दोनों गीतों की भी चॉइस दे रही हूँ. वैसे आपने जो गीत बहुत पसंद किया है फिल्म एक नज़र का, वो है बी पत्ता पत्ता. अभी भी आप अगर वोट देना चाहते हैं तो वोट दे सकते हैं, बता सकते हैं कि पत्ता पत्ता आपको ज़्यादा पसंद है या फिर द टाइटल ट्रैक एक नज़र. जल्दी से मुझे लिखकर बता दें.
0: सरिता सबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइक अ गर्ल,
2: एंड दिस इज फ्रॉम द फिल्म मिलाप.

0: Sarita Summerwall with your weekend classics.
1: जी हाँ, सरिता है आपके साथ और आपको प्यारे प्यारे गीत सुनवा रही हूँ उस आर्टिस्ट की फिल्मों के जिन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई, लाइक एक नज़र, ज़रूरत, मिलाप, नई दुनिया नए लोग, हाथी के दांत, एक नाव दो किनारे, दिल की राहें, चरित्र, प्रेम शास्त्र एंड दावत, बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे के सारे गीत आपको पसंद आ रहे हैं और आपने इनकी कुछ फिल्में ज़रूर देखी होंगी। आइए अब ज़रा ये भी जान लें कि एक्स्ट्रा पॉड में क्या हो रहा है, पॉडकास्ट में इस हफ्ते क्या हम आपको दिखा रहे हैं।
2: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Leica Extra Podcast Update.
1: Right, we आपको बता दें कि Leica Extra Podcast वैसे available है on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms. और इस दफा का topic है reinvention and entrepreneurship. और Deep Raja speaks to Meenal Sambre from Samaria Global Finance Limited. So देखिएगा जरूर.
2: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
5: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
7: सच?
5: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
8: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 Cranbrook Road, Gans Hill, Ilford, IG2 6HA. Call kare 07555-506-015. Bikaner wala Taste of India now in Ilford.
9: Bharatiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners, Leica Radio Network.

0: राज किरण और सारिका पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। बहुत प्यारी फिल्म थी जिसका नाम था कागज़ की नाव। 1975 में बनाई थी ये फिल्म बी आर इशारा जी ने, और उस फिल्म का ये गीत मैंने आप तक पहुंचाया। आइए आप आगे बढ़ लें।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 128.67, Pakistani rupees 370.36, Sri Lankan rupee 447.91, Bangladeshi taka 164.50, Afghanis 87.95 and US dollars 1.33.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And gold ka rate is fact market mein chal raha hai, £97.95 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: भी एक नज़र का गीत जो मेरे ज़्यादातर लिसनर्स ने लिखा है कि साथियों ने कहा है कि वो गीत प्रोग्राम में शामिल हो, तो वो गीत मैं शामिल करने जा रही हूँ अब। एंड द सॉन्ग इज़ कॉल्ड पत्ता पत्ता बूटा बूटा। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। बी आर इशारा जी ने ये फिल्म बनाई थी जिसका नाम था एक नज़र। आपने देखी थी ये फिल्म? अगर देखी थी तो आपको याद है कि आपको पसंद आई थी ये फिल्म या नहीं पसंद आई थी। इसमें इसे डायरेक्ट एंड इसकी स्टोरी भी लिखी थी बी आर इशारा साहब ने, एंड म्यूज़िक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गाने सारे अच्छे थे लेकिन ये गाना काफ़ी मशहूर हुआ था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। पहले 100 बार इधर और उधर देखा, वो भी गाना बहुत खूबसूरत था इस फिल्म का। एंड हम ही करें कोई सूरत उन्हें भुलाने की, उन्हें तो आदत है भूल जाने की, समथिंग लाइक दैट। तो अनलेस आई सिंग, मुझे याद नहीं रहता कि वर्डिंग्स क्या है, लेकिन जैसे ही गाना शुरू करो तो फिर आ जाते हैं अपने आप। सो आपको पसंद आएगा ये गीत, एंड इस गीत के साथ साथ आप गुनगुनाना चाहें तो ज़रूर गुनगुनाइएगा।
3: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, मोहम्मद रफ़ी साहब एंड लता जी की आवाज़ एंड अमिताभ बच्चन एंड जया जी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। उम्मीद करती हूँ आप सब ने इन्जॉय किया। जिन्होंने भी इस गीत को वोट दिए उन सबका मैं थैंक्स करना चाहूँगी। जैस्मिन, नरेन, कैंची, आप सभी सुन रहे हैं, दिव्या हैरोसे एंड महेंद्र बरजारिया जी, इंतशाब, हंसा वोरा जी, उल्लास टोरोंटो से, बहुत लंबी लिस्ट है सहर, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। तो मैं बी आर इशारा साहब के लिए इतना ज़रूर कहूँगी, बताऊँगी आपको कि बी आर इशारा वॉज नॉट जस्ट अ फिल्म मेकर, ही वॉज अ मेंटोर हु हैड एन आई फॉर टैलेंट एंड ही इंट्रोड्यूस एंड ऑल्सो नर्चर्ड सेवरल न्यू कमर्स हु वुड गो ऑन टू बिकम स्टार्स एंड इंडियन सिनेमा को उन्होंने नोटेबल एक्टिंग में एक्टिंग करवाई उन सभी से, लाइक प्रवीण बॉबी, बापी लहरी, डैनी डेंसन गप्पा, राकेश पांडे, विजय अरोड़ा, जया भादुरी यस एंड अमिताभ बच्चन, रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, राज किरण एंड रजा मुराद। एंड इन 1984 में बी आर इशारा साहब ने रेहाना सुल्तान से शादी की थी, जिन जो कि उनकी चेतना फिल्म की हीरोइन थी। एंड ही पास्ड अवे आज ही के दिन 25th of July इन 2012 एंड इन मुंबई, लीविंग बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ फिल्म्स दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर फिल्म मेकर्स एंड ऑडियंस अलाइक। सो बस यहीं तक, और नेक्स्ट आवर में जी एस कोहली जी को हम याद करने जा रहे हैं। सुनते रहिए, साथ दीजिएगा।
1: Dad, dad, dad.
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
1: SBI UK regulated by the FCA and PRA.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से.
2: शाम चलने लगे.
1: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
4: गारंटेड.
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
4: फोन 02085748410.
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
7: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
8: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300999.

0: क्या बात है, दोनों गीत बहुत खूबसूरत थे। पहला गीत आपने सुना फ्रॉम द फिल्म सपने साजन के, 1992 में आई थी ये फिल्म। एंड सपने साजन के एक्चुअली आज नहीं कल यानी 24th of July 1992 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें काम किया था करिश्मा कपूर ने, साथ में थे राहुल रॉय। लॉरेंस डिसूजा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, नदीम श्रवण का संगीत था और समीर ने लिखा था वो प्यारा सा गीत जिसे आपने सुना था, मुकुल अग्रवाल एंड अलका याग्निक की आवाज़ों में। एंड फिल्म का नाम मैंने बता दिया आपको, सपने साजन के। और कल ही के दिन यानी 24th of July 1981 में आई थी कलयुग भी। एंड 1981 में ही कल के दिन रिलीज़ हुई थी धनवान। धनवान जिसमें राजेश खन्ना और शबाना आज़मी थे, सुरिंदर मोहन ने इसे डायरेक्ट किया था एंड हृदयनाथ मंगेशकर और कुछ और साथियों ने इसे इसका संगीत तैयार किया था एंड साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे थे गीतों के बोल। सो उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। अब ड्रीम गर्ल, यस, हेमा मालिनी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है। वेल, दो गीतों में से वैसे हमारी इंतशा एक बहुत प्यारा गीत सुनना चाहती थी, प्रेम नगर का। अनफॉर्चुनेटली वो गीत मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपको चॉइस देती हूँ दो गीतों की। फिल्म वारिस 1969 में आई थी ये फिल्म, उस फिल्म का एक गीत है लता मंगेशकर एंड रफ़ी साहब का गाया हुआ, कभी कभी ऐसा भी। एक तो ये गीत और दूसरा गीत है अभिनेत्री फिल्म का, 1970 में आई थी ये फिल्म और ये भी लता जी ने गाया और सादिया किशोर दा ने, सारे गामा पा वाला गाना। कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, जल्दी से अपने वोट से, यू गॉट अबाउट 2 मिनट्स।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बहुत काम आसान है। You can go to the bank और online या फिर ऐप के जरिए कर सकते हैं। अगर आपने SBI UK का डाउनलोड किया हुआ है ऐप तो घर बैठे आप ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। और आज आपको एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले क्या मिल सकता है, 128 rupees and 30 paisa। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: नो नीड टू फ्लाई बैक होम this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
7: दिशा rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
13: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
14: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
15: Ilford, ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
16: Bikaner wala parampara bhi.
17: Famous chole bhature, raj kachori, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555-50-6015.
18: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: फिल्म वारिस से चुना था मैंने इस गीत को। हेमा मालिनी जी ने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, इतने प्यारे प्यारे गीत हैं, तो ये गीत मुझे लगा कि थोड़ा रेयर है, ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। इंतशाब, आपकी पसंद मैं ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी किसी और दिन, लेकिन आज आपको निराशा मिली, बट डोंट वरी। आंटी जी अभी अभी आई हैं, थैंक यू सो मच। हना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहिए। इसी तरह से विमल रायन जी एंड किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगतार जी, आप सुन रहे हैं वैंकूवर में प्रोग्राम, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत। आई अब जीएस कोहली जी की फिल्म के गीत, कुछ एक मैंने चुने हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। जीएस कोहली साहब के बारे में शायद आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। जीएस कोहली इज़ बेस्ट नोन फॉर सॉन्ग्स लाइक तुमको पिया दिल दिया, याद है शिकारी का गाना, मांगी हैं दुआएं हमने सनम, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, अपनी आंचल की ज़रा मुझको हवा दे दो, एंड माना मेरे हसीन सनम। सारे गाने बहुत खूबसूरत, प्यार के दामन से लिपटे, ऐसे गीत इन्होंने कंपोज़ किए। एंड इनका पूरा नाम था गुरशरण सिंह कोहली, नोन एज जी एस कोहली, वॉज बॉर्न इन 1928 इन पंजाब, और सिख पंजाबी सिख फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। अर्ली ईयर्स में इंडस्ट्री में आए ये और असिस्टेंट के तौर पर काम किया लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब के साथ, एंड उसके बाद फिर इन्होंने अपने अलग से म्यूज़िक देना शुरू किया। इन 1960 जी एस कोहली, उनकी डेब्यू जो थी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर फिल्म थी विद कृष्ण मलिक्स लो बजट लंबे हाथ। लंबे हाथ का गीत मैं प्ले करना चाहती थी, लेकिन आज ही हमारे यहाँ से ये गीत प्ले हुआ है, इसलिए मैं आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगी। वो गाना बड़ा क्लासिक हिट गाना है, द फिल्म हैड द फेमस नंबर प्यार की राह दिखा दुनिया को, बहुत प्यारा गीत है। एंड हिज नेक्स्ट वॉज जी पी सी पी की फिल्म थी मिस्टर इंडिया इन 1962, और इसमें गीता बाली थी, आई एस जोहर थे, हेलन थे, कमल जी थे, एंड द फिल्म हैड अ फ्यू फेमस सॉन्ग्स लाइक मत पूछ मेरा है कौन वतन, ऐसे गाने थी, और आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट सॉन्ग एनीवे। और इसके इस बाद शिकारी के गाने बहुत फेमस हुए, तो शिकारी के तुमको पिया ये दिल दिया और अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, इन दोनों गीतों में से मैंने चुनना था एक गाना और मैंने चुन लिया है, तो सुना दूं आपको।
1: This is Like a Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Like a Group. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: And I love this song. Mujhe umeed hai ki aap bhi meri pasand ko pasand karenge aur saath saath gungunayenge zarur. लता जी एंड रफ़ी साहब की आवाज़ें।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Right, big geet aapne suna aur bahut pasand kiya, ye jankar mujhe bahut acha laga. Thank you. Aur ab main apne sabhi sunne walon ko kuch batana chahti hu.
3: Ye hai Laika Gold.
2: लाइक रेडियो नेटवर्क के जरिए मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है और उम्मीद करती हूं कि लाउड एंड क्लियर ये आवाज आप सब तक पहुंच रही है. और जरा ध्यान से सुनिएगा, लाइक रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी, द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल एल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव्स एट ओवो Wembley Arena on Sunday, 27th of September. A student pre-show takes place from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main event from 6:15 to 9:30 p.m. And created by Sanatan Events, founder hai jiske Nitin Palan MBE, and featuring choreography from the Bollywood Dance School team jo hai unki choreography. And the English language production brings like Ramayana to life with four chapters, a bespoke seven-song soundtrack and a full international cast. So, ज़्यादा जानकारी के लिए आप diwalistory.com पर जाइए and अपनी tickets भी book करा लीजिएगा.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
2: Another beautiful song composed by G.S. Kohli sir. Film ka naam tha Namaste Ji, jo 1965 mein aayi thi. वैसे ऐसे गाने आप बहुत सुनते हैं विंटेज गोल में. और सैंडी जी आ रहे हैं मेरे बाद, ऐसे ही गीत आपको सुनवाएंगे ऑल द वे टिल 10 o'clock.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: राइट भी इन गीतों के जरिए हमने याद किया जी एस कोहली साहब को और कुछ एक गीत मैंने उनके फिल्म जो उन्होंने कंपोज़ किए वो आप तक पहुंचाए और उम्मीद करती हूँ कि इन गीतों को आपने पसंद किया और जो मेरे साथी शुरू से मेरा साथ दे रहे हैं बड़े प्यार से मुझे बता रहे हैं कि सरिता बहुत अच्छे लग रहे हैं गाने रेयर हिट्स हैं तो उनके लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी। चार दरवेश 1964 में इनकी फिल्म आई थी जिसका संगीत इन्होंने दिया था। देन दो मतवाले नौजवान इन 1966, संग दिल इन 1967, जंग और अमन इन 1969, गुंडा इन 1969 एंड जालसाज इन 69। सो आफ्टर इन्होंने 15 साल तक इन्होंने बहुत काम किया और उसके बाद फिर फेड आउट हो गए। पर जितने भी गीतों में उन्होंने संगीत दिया, जिन फिल्मों में संगीत दिया, सभी फिल्मों का संगीत पसंद किया गया। तो ये छोटी सी ट्रिब्यूट थी जी एस कोहली साहब को जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। और अब आगे बढ़ लें।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, we आपको बता दें कि इस वक्त एक पाउंड के बदले आपको क्या कौन सी करेंसी में क्या मिल सकता है। इंडियन रुपीस मिलेंगे 128.63, पाकिस्तानी रुपीस 370.35, श्रीलंकन रुपीस 447.91, बांग्लादेशी टका 164.45, अफगानी 87.92 एंड US डॉलर्स 1.33.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Gold. Leica Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Right, Gold ka rate is what market mein 97 pounds and 95 pence per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Leica Gold and Leica Radio Midlands. Yeah,
4: yeah. Leica Gold. श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu Toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
1: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
2: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com T&Cs apply

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627।
3: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स।

Well, जाने को तो दिल मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन जाना होगा क्योंकि सैंडी बिल्कुल तैयार हैं, अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो बता दूं, ये फिल्म यकीन से चुना था मैंने गीत, ये फिल्म भी आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी जिसमें शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र ने काम किया था। ब्रिज सदाना ने इसे संगीत पर डायरेक्ट किया था और शंकर जैक्सन का संगीत था। और आपको छोड़े जा रही हूँ प्यार का मौसम का एक प्यारा सा गीत, आपकी नज़र करती हूँ। मेरे पास सैंडी शाह आ रही हैं यहाँ, क्यों ना जाऊँ, जाना है ना। और दूसरी तरफ सोनिया एंड अंकुर होंगे मैनचेस्टर में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखें, उनकी लुक आफ्टर करें। और मुझे इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी जगह। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड इवनिंग।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: I enjoyed the music throughout on Like a Golden Night. It's my turn all the way till 10 p.m. And if you're here for the first time, as always, a massive welcome to you. And if you're a regular, well, I thank you as I always do. So as always, kicking off with the Mohammed Rafi Saab back to back. Hope you enjoyed that. Going forward, we're going to dive straight into those wonderful memories and go back to 1948. और शमशाद बेगम की आवाज़ फिल्म का नाम अनोखी अदा नौशाद का संगीत होगा फिर उसके बाद अ रेयर सॉन्ग वी डोंट हियर वेरी ऑफ्टन आवाज़ होगी मुकेश की और फिल्म का नाम है हमारी बेटी एंड यू लुकिंग एट 1950 वाज़न्ट अ वेरी बिग फिल्म स्टार्ड मोतीलाल और नूतन और संगीतकार थे स्नेहलाल बतकर दिस इज विंटेज गोल्ड विद सैंडी शाह
1: ये है लाइका गोल्ड
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 going to get you 128.18 Indian rupees. Don't forget you can exchange in branch, online or by using the SBI Yono mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Vintage Gold on Leica Gold. WhatsApp message Leica Gold now on 0744 23 23 23. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Need anything from Tesco? Get full marks on the full shop for back to school with 25% off all school uniform with club card prices this week. Shop in store or online now. If only figuring out the kids' homework was that easy. Tesco, every little helps. Selected F&F kids' bags and coats included. Club card app required. Ends 26th of July.
1: Ye hai
4: Leica Gold. 073-00-99-8823. नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300

0: Vintage Gold with Sandy Shah.
1: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: Vintage Gold with Sandy Shah. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट एक शाम सोलफुल म्यूजिक डिवोशन और एनर्जी के नाम टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क
3: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
4: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
3: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
4: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
3: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
6: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
7: Search is changing.
8: Customers aren't just using Google anymore.
7: They're asking AI.
8: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
7: One business, one recommendation.
8: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
7: Will your business be the answer?
8: Or the one that got left behind?
7: The future of search has already started.
8: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
7: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
10: बीकानेर वाला परंपरा भी
11: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे टेस्टी स्नैक्स मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB कॉल 07795181001
0: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रागासन Vintage Gold on Leica Gold. Cool music for a super hot summertime. On Leica Gold.

0: है
1: Leica Gold.
0: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 hour line.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
5: Dad.
6: What's wrong, beta?
5: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
6: I will run down to the money exchange now.
5: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
6: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK is regulated by the FCA and PRA.
7: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon. Classic Nagme.

ठंडे ठंडे वहां फकीरे वहां फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे।

0: Non-stop classics. This is Like a Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
4: 25? Seriously?
3: Sounds like Ojo time.
4: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
3: Sorry about the wait. How can I help?
4: You can help me celebrate. I won.
5: Feel the fun. Play Ojo.
6: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gambler aware. T's and C's apply.
7: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
8: Mum, I'm outside.
9: Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
11: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Like a Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at likeamedia.co.uk.
12: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।